पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले बिहानको 9 बजे।

0: मेरो फुलीवाली अब के छ त चित्र
1: के विचार को फुलीवाली मतलब बहिनी
0: बहिनी त साली हो तिमी त मेरो फुलीवाली

0: 말해, 뭐지, 뭐지, 뭐지? 어, 내가 어떻게 하니? 자, 자, 자, 자, 자, 자.
1: 야세 दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू जारी भी गली खवा ले का अरे रे ए ए
1: आ जिगर पलट